अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: दुनिया पक्की 420 दुनिया पक्की 420 मार मार के अरे मार मार के चप्पल मेरी कर दी चप्पल मचंती दुनिया 420 दुनिया पक्की 420
1: है। दीप निराली सुन तबले के करे कवाली

चाहिए मोटा बकरा मोटर साड़ी सुर में गानी। जहाँ भी तकड़ा इंजन देखा करती शंटम शंटी दुनिया 420 दुनिया पक्की 420।

पुण्य संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीदरलैंड तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: कोट यार तोर जन्मदिन है तोर सालगिरह है और खाए त्राव तोर विवाह होने वाला है तोर शादी होने वाला है या किसी का मुंडन संस्कार है उजाला रेडियो पर फरमाइश आप दे सकते हैं 15 फरमाइश तोर मार होने तोरो और उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.nl

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार मुरली, बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 80 साल के आयु में तख्त यार और श्रीमान परस मुरली और बाकी दो स्वर्गीय भाइयों, चार बहनों और चार स्वर्गीय बहनों के बहन, दो भाऊजी के ननद और सभी लड़कन के फुआ और मौसी, देनहाग की रहने वाली श्रीमती सवित्री मुरली की मृत्यु देनहाग में हो गई है। नीदरलैंड और सूरीनाम से समस्त परिवार मुरली, बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 80 साल के आयु में तख्त यार औत श्रीमान परस मुरली और बाकी दो स्वर्गीय भाइयों, चार बहनों और चार स्वर्गीय बहनों के बहन, दो भौजी के ननद और सभी लड़कन के फुआ और मौसी, देनहाग की रहने वाली श्रीमती सवित्री मुरली की मृत्यु देनहाग में हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बीफे के दिन में 2 बजे दोंदरदास्तांद ओम 2 uur किए जाएंगे। क्रीमेटोरियम ओकनबर्ग, ओकनबर्गस्ट्रैट 2121 देनहाग में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर उत्फार्थ फ्रजोर्खिंग समस्त परिवार मुरली और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

चांद जैसी लड़की। उदित नारायण की आवाज में गीत आप सुने और फिल्म देवदास से निकाला हुआ। उजाला रेडियो पर अब लता जी। हाँ, लता जी के साथ श्री कुमार को आप सुनेंगे।

जिया जले रात भर धुआं चले। लता जी की आवाज साथ में एम जी श्री कुमार, फिल्म का नाम दिल से, और जावेद अली की आवाज में गीत सुनिए।

तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं सुन वालों, तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस खाई बिनकोट ट्रावल, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है, नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: हेलो, पापा की जिद के आगे हार गए। शादी हो रही है मेरी, हो सके तो भूल जाना।
1: ऐसे कैसे भूल जाऊं तुम्हें, प्यार छोटा नहीं है मेरा।

नम्र संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

नाना नानी दादा दादी काका काकी मामा मामी फुआ फुफा बहन और ए भाई तो भी सुने हैं तो उजाला रेडियो।

और बहुत प्यारा सा गीत महेंद्र कपूर और आशा जी से आप सुने। फिल्म का नाम धूल का फूल और ये उजाला रेडियो है। सुनने वालों, मोहम्मद रफी साहब अब प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे।

सपना वो टूट गया क्या करें, लेकिन भरम वो दिल को प्यारा था। आप नाराज खुदा खैर करे,

आप नाराज, खुदा खैर करे। मोहम्मद रफी साहब की आवाज, फिल्म प्यार मोहब्बत का गीत, और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो का प्रोग्राम। एक बार फिर आशा जी, और अब है शमशाद बेगम के साथ में।

और कजरे ने ले ली मेरी जान। आशा जी के साथ शमशाद बेगम से आप सुने फिल्म किस्मत का गीत उजाला रेडियो पर।

ये उजाला रेडियो है अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग आगाज करते हैं जो आमसदाम स्टूडियो से नशर किया जाता है। हर एक सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं हूँ आपका हम सफर निशा। नगमे जो हमने चुने हैं अपने संगीत के खजाने से, इसमें ज़रूर आपकी पसंद भी होगी, इतना मुझे यकीन है। आप बेसब्री से इस पल को इंतज़ार करते होंगे। शुरू करती हूँ इस पैगाम से। रब कहता है किसी को तकलीफ़ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी दे देते हो तो फिर अपने खुशी के फिक्र मत करना। मेरे दिल में है इश्क मोहम्मद।

नाते नबी पेश था, आवाजें थी अब्दुल रहमान और साथियों का। इसे रूहानियत अंदाज में सुनवाते हैं भजन, दर्ज है। मोरे शाम पल पल, मोरे मुख से निकले निस्दिन तेरो नाम।

रूहानियत अंदाज में पेश था मजहबी और भक्ति संगीत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमने कई शैलियों में गीत संगीत पेश करती हूँ। गजल शौकीन के वास्ते हमने गजल चुने हैं। उम्मीद है कि आप इस हिस्से के प्रोग्राम में लुत्फ उठाएंगे। पहले शेर अर्ज है, उसकी मोहब्बत का सिलसिला भी क्या अजीब था, अपना भी ना बनाया, अपना भी ना बनाया और किसी का होने भी ना दिया। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना

दिल छू लेने वाली गज़ल पेश थी महान गज़ल गायिका बेगम अख्तर की आवाज़ में। कलाम था शायर शकील बडायूनी का। हमें अब खो के कहता है मुझे तुम याद आते हो, किसी का हो के कहता है, किसी का हो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। समंदर था तो जोर व शोर से लहरें बहता था, अब कतरा हो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। बयां करते जो हाल दिल तो यूं मुस्कुरा देते, अब वही रो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। ना पूछ उसकी बदनसीबी का आलम मोहसिन, वो मुझ को खो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया।

खूबसूरत अंदाज में पेश थी ये गजल पंकज उड़हास की आवाज में। कलाम था शायर शकील बड़ायूनी का। हम नाजुक नाजुक दिल वाले बस ऐसे ही तो होते हैं, कभी हंसते हैं, कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कभी दिल में ख्वाब भी रोते हैं। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये न जाने हाय हाय ये जालिम जमाना।

खूबसूरत अंदाज में पेश थी ये गज़ल महान गायक केएल सहगल की आवाज़ में। उनके जैसा तो कोई हमको दोबारा ना मिला, हम भंवर में ही रहे, हम भंवर में ही रहे, हमको किनारा ना मिला। डर गए जब भी वहशते हालात से हम, मनाना चाहा था मगर कोई सहारा ना मिला। चांदनी रात में तारों की आसमान पे हमें उनकी आँखों की तरह, उनकी आँखों की तरह कोई सितारा ना मिला। रात भर क्यों उनकी हंसी, उनकी हाइयाँ याद आई, जिनकी बाहों में जैद कोई सहारा ना मिला।

मोल नगमा पेश था तलत महमूद की मखमली आवाज़ में। मौसिकार शिवंग की मौसिकी थी, नगमकार था शायर नक्शब। अब लीजिए पेश है लकी अली और सुनिधि चौहान की गाई हुई ये दो गाना।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये डुएट। मौसिकार M.M. क्रीम की मौसिकी थी, कलाम था शायर निदा फासली का। अगला दो गाना सुनवाएंगे मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

अम्मा का दो गाना पेश था, संगीत से सवार थे शंकर जयकिशन बोल था, शायर शैलेंद्र का। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं, उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से लुत्फ उठा रहे हैं। कौन कहता है वक्त बहुत तेज गुजरता है, तुम कभी किसी का इंतजार करके तो देखो, ऐसे में कोई किसी का दीवाना ना बने।

दिल छू लेने वाले नगमा पेश था से रामचंद्र की मौसिकी थी। दर्शकों लिखने वाले थे पीएल संतोषी। अब लीजिए पेश है महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में ये दो गाना।

मामूल नहमा पेश था, रवि की मौसिकी थी और साहिर लुधियानवी का बोल था। ऐसी हसीन चांदनी पहले पहले कभी न थी, सुनाने को जा रहा है मीठी आवाज में किशोर कुमार।

आप सभी सुनने वालों को फिल्मी दुनिया में एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इस हिस्से का प्रोग्राम में हमने फिल्मी दुनिया के उस महान फनकारों के बारे में बयान करती हूँ जो नए उभरते सितारों का प्रेरणा है, उन महान कलाकारों की तरह बनना चाहते हैं, जैसे कि धर्मेंद्र, जिसके बारे में हमने कई प्रोग्रामों में बयान किया है। धर्मेंद्र का प्रेरणा था दिलीप कुमार। वो बड़ा होकर दिलीप कुमार की तरह अदाकार बनना चाहते थे। कई प्रोग्रामों में हमने महान मारू शख्स धर्मेंद्र के बारे में बयान किया है, कैसे उनकी बचपन बीता और कब वो फिल्मी दुनिया में कदम रखे। पिछले प्रोग्राम में हमने बतलाई थी कि धर्मेंद्र ने अपना किरदार दिलो जान से निभाते थे, और जब उसे सवाल किया गया कि वो कई फिल्मों में काम किया जो ब्लॉकबस्टर हिट हुई, तो उसका क्या जवाब है, तो धर्मेंद्र साहब ने कहा, मेरे लिए अदाकारी कुदरत का तोहफा है। हाँ, एक बात मैं मानता हूँ, मुझे गाना पर डांस करने में थोड़ी घबराहट होती है। आगे क्या होता है, पहले एक गीत सुनवाती हूँ, फिर कहानी हम आगे बढ़ाएंगे।

फिल्म सीता और गीता का गीत पेश था। इस फिल्म में काम किए थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और संजीव कुमार। धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में काम कर चुका था जो आवाम पसंद किया, लेकिन उसने खुद कहा था कि एक फिल्म जो उसे खुद पसंद था वो थी फिल्म फूल और पत्थर, अदाकारा मीना कुमारी के साथ। धर्मेंद्र की पहली फिल्म मीना कुमारी के साथ थी फिल्म पूर्णिमा। धर्म ने कहा जब उसे कहा गया कि वो अदाकारा मीना कुमारी के साथ काम करेंगे तो वो एक तरफ घबराहट महसूस कर रहा था और दूसरी तरफ जज्बा। वो मीना कुमारी के बारे में जानना चाहते थे, वो कैसे थी। पर दोस्तों ने धर्म को तसल्ली दिलाए कि जिन्होंने मीना जी के साथ काम किए हैं सभी के साथ वो अपनापन जताती थी और नए उभरते सितारों को बहुत कुछ सीखने को मिला था। हाँ, दोस्तों ने धर्म से एक मशवरा दिया था कि पहली बार जब तुम मीना जी के सामने खड़े होंगे तो तुम ज़रूर उनकी पाँव छूना। धर्मेंद्र ने कहा मीना जी से मिलकर उसे सुकून मिला और जिस तरह से मीना जी मिलकर बातें की वो बयां नहीं कर सकता था। धर्मेंद्र और मीना कुमारी एक साथ कई फिल्मों में काम किए। पहली फिल्म थी पूर्णिमा, फिर मैं भी लड़की हूँ, काजल, फूल और पत्थर, चंदन का पलना, मछली दीदी और बहारों की मंजिल। अब हम सुनवाते हैं फिल्म पूर्णिमा में से ये दो गाना। गाने वाले हैं मुकेश और लता मंगेशकर।

0: फिल्म पूर्णिमा में से ये जुगल गीत पेश था जो मीना कुमारी और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया था। इस गीत से पहले आपने सुना कि धर्मेंद्र जी मीना कुमारी के साथ कई फिल्मों में काम किया था। पहले तो मीना जी से मिलने के ख्याल से घबराहट महसूस कर रहा था, पर कई फिल्मों में साथ काम करने से दोनों की दोस्ती मजबूत हो गई थी। इसलिए क्योंकि धर्म ने मीना जी का बहुत ख्याल रखता था। धर्मेंद्र ने कहा, मीना जी के साथ काम करने से बहुत कुछ सीखने को मिला और वो खुलेआम उस कर्ज को कबूल किया कि उसने उसे वो बना दिया जो वो आज है। एक बार एक जर्नलिस्ट धर्म से मिलने उनके घर गया, इंटरव्यू लिया, फिर चाय और शरबत पीने के बाद वो वापस जाना चाहते थे, पर आगे के बागीचे में काम जो हो रहा था, धर्म ने कहा, हम आपको दूसरी तरफ से रास्ता दिखाते हैं। दोनों पीछे के गार्डन से गुजर रहे थे तो देखा दो औरतें बैठे हुए थे। धर्म जर्नलिस्ट को दोनों से तारुफ कराए और अपने बीवी प्रकाश से कहा, ये मेरा दोस्त है। प्रकाश कौर ने अदब से सलाम किया और कुछ कहा नहीं। फिर भी जर्नलिस्ट कहा, उस पल वो भूला नहीं। जर्नलिस्ट ने कहा, वो धर्म से मिलने कई बार उनके घर गए, पर हम उसकी बीवी और बेटियों की करीब नहीं जा सकते थे। फिर भी प्रकाश कौर घर गृहस्थी भागदौड़ सब वो संभालती थी। एक बार किसी ने धर्म से सवाल किया कि सर, आपने बेटा सनी की फिल्म बेटा लॉन्च किया शुरू किया तो जाहिर है दूसरे बेटा बॉबी से भी इसी लाइन में काम करवाएंगे, और आपकी बेटियों के बारे में मैं क्या ख्याल है? तो धर्म उसके तरफ गौर से देखा और कहा, प्लीज डार्लिंग, कभी ना लिखे कि आपने मुझसे ये सवाल किया है। धर्मेंद्र के दोनों बेटे फिल्मों में कामयाब हुए। सनी देओल की पहली फिल्म बेताब, जो नेहतेंद्रियन तख्तख में रिलीज हुआ था, तहलका मचा दिया था। सनी देओल के साथ थी अदाकारा अमृता सिंह। और दूसरा बेटा बॉबी देओल की फिल्म बरसात, जो नेहतेंद्रियन में रिलीज हुआ था, ये भी ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई। साथ में थी ट्विंकल खन्ना, राज बब्बर और डेनी डेजोंगपा। कहानी आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार से ये डुएट।
1: वादा?
2: हाँ वादा।

फिल्म द बर्निंग ट्रेन से ये गीत पेश था और ये दो गाना फिल्माया गया था धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर। इस गीत से पहले आपने सुना कि धर्मेंद्र के दोनों बेटे सनी और बॉबी देओल फिल्मी दुनिया में मकबूल हुए। दोनों बेटे अपने वालदैन के साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली थे। सनी देओल शादी के बाद अपने बीवी पूजा, दो बेटे करण और राजवीर और बॉबी अपने बीवी तानिया, दो बेटे आर्यमन और धर्म सभी मिलजुल के एक साथ रहते थे। धर्मेंद्र ने कहा अपने दो बेटे सनी और बॉबी की मेहनत फिल्मों में देखकर कभी कभी आंखें नम हो जाता था। हम सब आज भी हर रोज जिंदगी के बारे में सीख रहे हैं और उम्मीद है कि हमारे पोते एक दिन भी फिल्मों में कदम रखेंगे। उसमें मेरा खून जो है और ज़रूर कामयाब होंगे। मैं देख रहा हूँ कि आज बच्चों को अपने वालदैन से इतनी आज़ादी मिल रहे है। और कहा धर्म ने कि ऐसे कंप्यूटर्स है जिनसे अच्छे और बुरे दोनों नतीजा सामने निकले हैं। सभ्यता और तहजीब जिसके लिए हम हिंदुस्तानी जाने जाते थे वो भी जा चुके हैं। मुझे अपने बेटों पर बहुत फख्र है जो उन संस्कारों, तालीम व तरबियत को बरकरार रखे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं जो मेरी बीवी प्रकाश और मैंने उन्हें दिए हैं। जुहू में उनका बंगला रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों और यहाँ तक कि मीडिया के लिए भी घर खुला हुआ है। और जब हम एक ही छत के नीचे होते हैं तो हम कभी भी सिनेमा के बारे में बातें नहीं करते हैं। अब हम आपको फिल्म प्रोफेसर प्यारेलाल में से एक गीत सुनवाते हैं। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ काम किए थे जीनत अमान, सिमी गरवाल, शमी कपूर और अमजद खान।

इस गीत से पहले आपने सुना कि धर्मेंद्र ने कहा कि इस दौर के माँ बाप अपने बच्चों को आज़ादी दिए हैं और कंप्यूटर के ज़रिए क्या सीखते हैं क्या ना, पर वो फ़ख्र से कह सकते हैं कि वो अपने बीवी प्रकाश के साथ अपने बच्चों को संस्कार, तालीम व तरबियत दिए हैं जो अभी भी बरकरार है। धर्मेंद्र जी की मेहनत फिल्मी दुनिया में रंग लाए, अवाम उसे झुक कर सलाम करते हैं, फिर भी उसने अपने आप से सवाल करता, नौकरी करता, साइकिल पे आता जाता, फिर भी पोस्टर में अपनी झलक देखता, रातों को जागता, अनहोनी ख्वाब देखता, सुबह उठकर आईने से पूछता, क्या मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ? मैं कई बार अपने काम से फिल्मों में उम्मीदवार था, मुझे कोई अवार्ड ना मिला, मुझे गिला नहीं, रंज नहीं, अवाम तो मुझे सराहते प्यार करते हैं, वो अहम है। धर्मेंद्र ने फिल्म गद्दर के बारे में जिक्र किया, जिस फिल्म का हिदायतकार था अनिल शर्मा और प्रोड्यूस किया था नितिन केनी। फिल्म गद्दर में सनी देओल का किरदार लाजवाब कमाल का काम किया। बतवारे का समय नेहती सैफ नफेतह की कहानी थी। इस फिल्म न सिर्फ इंडिया में पर विदेश में भी लोग इस फिल्म को बहुत पसंद किया, पर अफसोस फिल्म गद्दर में कई उम्मीदवार थे पर बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म लगान को दिया गया। फिल्म गद्दर 9 बार उम्मीदवार थे। अब हम आपको फिल्म घायल में से एक गीत सुनवाएंगे। इस फिल्म को 7 बार फिल्म फेयर से नवाजा गया था और इसी फिल्म में सनी देओल को बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर का खिताब से नवाजा गया था।

फिल्म घायल का प्रोड्यूसर था धर्मेंद्र साहब और हिदायतकार थे राजकुमार संतोषी। अब हम अभय देओल के बारे में इत्तला करेंगे। अभय देओल धर्मेंद्र का भाई अजीत सिंह देओल का बेटा है। अभय अपने चचा धर्मेंद्र को पापा और अपना पापा को अंकल बुलाते हैं। वो बचपन से ही इसी परिवार में पले बड़े हैं। अभय देओल ने 2-4 फिल्मों में एक्टिंग किया है। फिल्म सोचा न था का पेशकश था धर्मेंद्र जी। इस फिल्म में अभय देओल के साथ ही अदाकारा आयशा टाकिया। पत्रकार जब अभय से सवाल किया कि वो आज तक धर्मेंद्र के साथ क्यों फिल्म में काम नहीं किया, तो उसने कहा, मैं पापा को बहुत इज्जत करता हूँ, उसके सामने डायलॉग बोलना तो सवाल ही नहीं। मुझे नहीं पता कि अगर वो वहाँ हुआ तो मैं नॉर्मल रह पाऊँगा या नहीं। और कहा अभय, मैं भाइयों सोनी और बॉबी के साथ काम करना पसंद करूँगा, लेकिन बात वही, मुझे उनके साथ एक्टिंग करना है तो मुझे बेहतरीन होना है। आप फिल्मी दुनिया सुन रहे हैं। कई प्रोग्रामों में हमने महान फनकार धर्मेंद्र के बारे में बयान किया, उनके बचपन के बारे में, कब वो फिल्मों की तरफ रुख किया, धर्म के बीवी प्रकाश कौर उनके बच्चों के बारे में इत्तला किया। पर सारी दुनिया जानते हैं धर्मेंद्र का दूसरा देओल खानदान था। तो आज के लिए फिल्मी दुनिया यहीं पर रोक देती हूँ। अगले प्रोग्राम में हम बयान करेंगे।

अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने महान मारुशक धर्मेंद्र के बारे में बयान किया। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं तलत महमूद से ये नगमा।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये नगमा संगीत से सवारे थे सचिन देव बर्मन। मोहब्बत भरे अंदाज में लीजिए पेश है ये दो गाना।

उजाला रेडियो का पसंदीदा प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं, जो एम्स्टर्डम स्टूडियो से नशर किया जाता है। जो पाया था वो खोकर भी देख लिया, किसी का पूरी तरह होकर भी देख लिया। नहीं मिलता इस दुनिया में कुछ रोने से। मैंने उसके सामने रोकर भी देख लिया। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ।

फिल्म मासूम में से ये गीत लिया है, जिस फिल्म में शबाना आजमी और नासिरुद्दीन शाह ने अदाकारी किए थे। अब आइए सुने मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में ये जुगल गीत।

शंकर जयकिशन का संगीत रचना और शायद इन दीवार का लिखा तर्ज था। तेरा प्यार है बस मेरी जिंदगी, तेरी याद है मेरी बंदगी, जो तेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी।

संगीतकार हिमेश रेशमिया का संगीत रचना बोल सुधाकर शर्मा का था। अब सुनवाते हैं अगला गीत। आशा भोसले शोखी आवाज में क्या सुनाएंगी, लीजिए पेश है।

खूबसूरत अंदाज में आपने अभी ये गीत सुना आशा भोसले की शोखी आवाज में। किस्मत पे नाज है, किस्मत पे नाज है तो वजह तेरी मोहब्बत। खुशियाँ जो पास है, खुशियाँ जो पास है तो वजह तेरी मोहब्बत। मैं तुझसे मोहब्बत की तलब कैसे ना करूं। दिन है ये बहार के, फूल चुन ले प्यार के।

अनमोल नगमा पेश था, उषा खन्ना की मौसिकी थी, नगमकार था शायर जुगेश। इसी शहराना अंदाज में आप लुत्फ उठाइए अगला नगमा से।

मोहब्बत भरी अंदाज में पेश था ये नगमा मौसिकार श्याम जी घनश्याम जी की मौसिकी थी और शायर साजन दहलवी का कलाम था और आवाज में चार चांद लगाने वाला था मोहम्मद रफ़ी साहब। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से लुत्फ उठा रहे हैं। इसी मोहब्बत भरी अंदाज में सुनवाते हैं लता मंगेशकर से ये नगमा।

फिल्म अगर तुम न होते में से पेश था ये नगमा, संगीत से सवारे थे राहुल देव बर्मन ने। रात को तेरी तस्वीर बना बैठा, तस्वीर इतनी अच्छी लगी कि सीने से लगा बैठा, सोचा कि कहीं नजर ना लग जाए मेरे प्यार को, इसलिए अपने ही आंसू से मिटा डाला।

सॉन्ग पेश था तलत महमूद की शहद भरी आवाज में, संगीत से सवारे थे संगीतकार नौशाद अली ने। तेरा बिछड़ना कोई आम वाकया नहीं था। कई बरस बीत गए खुद को यकीन दिलाते हुए, आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया।

अभी आपने मनहर और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में ये दो गाना सुना। अगला दो गाना पेश है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में।

और इस गीत के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम खत्म करते हैं। प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़। नमस्कार। खादिमाते निशा।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।